0: धर्म गृथ्वा त्रे रजत कौजूर गृथ्वा द्वापर तप का सत गृथ्वा काल युग रथ का कूर अगृथ्वा भला पहला
1: शाम कैसे तंबर स्वामी।

0: क्यों करखिया सूतक पवै सोई। नानक सूतक मुतरै ज्ञान उतार तुए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अकी सूतक वेखना पर।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जानदा सब किश तेरे वस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जर

तुद आज्ञा बिनवता वड्डी हूं वड्डा अपार खसम जिस लेप ना पुन पाप तिशन बुझी आस पुनी मन संतोख त्राप हे प्राण नाथ गोविंद हे कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो हे शरण योग दयाल है

सुहावी कौन सुवेला जेत प्रभ मेला रहाओ। लाख भगत जां को रद है लाख तपीसर तप ही साध है लाख।

0: महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: इको ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। पिछड़ रात न जाग्यो जीवंदड़ो मोयो सें, जे तैं रब विसारिया ताऊं रब न विसरियो हें। जे तैं रब विसारिया ताऊं रब न विसरियो हें। रीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग उच्चा चढ़ के देखिया, तां घर घर एहा अग।

गुरु गरीब नवाज कृपा दे खजाने दया दे घर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले हो बड़ी अपार बख्शिश कृपा दे पात्र हो जो सतगुरु जी गुरु बाबा जी के बख्शे उद्दम सदका गुरु चरणा विच जुड़ करके सतगुरु जी की पावन और मुबारक हजूरी दा आनंद पे मानते हो। आओ गुरु प्यार वाले हो जो तन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रही ने उन्हां चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु तन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण। आप सरबत संगत असीस बख्शो कोई रसना वांझी ना रहे। दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे हां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी। अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी।

जे गुरमुख सत समाए मला तीजा अपना आपना पछाण मूड़ा अवरा आख दुखाई मुंडे दी खसलत न गईया अंधे विछुड़ चोटा खाए सात गुर कै पै भन न कड़ियो एह अंक समाए अन दिन सहसा कदे न चूके दिन शब्द।

सच्चा नाम न लगो मीठा, जित नाम नवनिध पाए। जीवत मरै मरै फुन जीवै, ता मुख अंतर पाए। तुर कर्म न पायो प्राणी, विण कर्मा क्या पाए। गुड़ का शब्द समान तुमूड़े, गात मत शब्दे पाए। नानक सत गुर तादे पाए,

सुख। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख नेरे, कोई ना जान तुमरा अंत, उचे ते उचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सुतर तारी।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय नवार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें त्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास वी सहाय। हर जनार गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस निठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दयावै ताय। सब थाई वे सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई वे सहाय दसां पातशाहियां जी दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ ददार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई देख के अनिट कीता। तना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां

आन दिन सहसा कदी न चूके, बिन शब्द दुख पाई। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नेतु तंदा करत विहाई। चरण कर देखत सुन थकी, दे मुके नेड़े आए। सचा नाम ना लगो मीठा, जेत नाम नव निध पाए।

सब दुख पुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत।

कृपा ती हो हर भगत, हर भगत जना के मोह डिठे, जगत तरिया सब लूड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत, आजूनी सह भंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, आजूनी सह भंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत।

दुख दारू सुख रोग प्या जा सुख ताम न होय। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होय। बड़े हारी कुदरवस्या तरंत जा रख्या रहा। जात में जो जोत में जाता अकल अकला पर पूरे हा। तू सच्चा साफ सुस

पाए मन हट क्या गुण गाए नानक आया सो परवान है जे गुरमुख सच्चे समाए महला तीजा अपना आप ना पछाने मूड़ा अवरा आँख दुखाए मुंडे दी खसलत ना गईया अंदर बिछड़ चोटा खाए सतगुर के पै पन्न न कड़िया रे अंक समाए अन दिन साहसा कदे न चूके बिन शब्दे दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला नित तंदा करत विहाए चरण कर देखत सुन थके देह मुक्के नेड़ आए सच्चा नाम न लगो मीठा जित नाम नवनिध पाए

तोर कर्म न पाया प्राणी, बिन कर्म क्या पाए। गुर का शब्द समाल तू मूड़े, गत मत शब्द पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए। पौड़ी जिस दे चित वसया मेरा स्वामी,

हर सुख दाता सबना गल्ला का तिसनो त्याएं दिया केवल निमख कड़ी मोह मोड़ी है। जिन हर ध्याया तिसनो सर्व कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बैया मोह जोड़ी है। सब दुख पुख रोग गए हर सेवक कै

भगत हर भगत जना कह महा डिठे जगत त्रया सब लोड़ी है सब दुख पुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़िए हर कृपा ते हो हर भगत

जी जपो सतनाम सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी जपो सतनाम सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी जपो सतनाम सतनाम

इस तरह आपस दे विच दोवें भिड़ गए ने कि जिवें बहुत तेज हवा चली होवे ते बदल जड़े ने ओ गरज गरज के आउंदे होण ते आपस विच टकराउंदे होण। इस तरह आनंदपुर साहिब ये महा

तोर कर्म न पायो तो रानी बिन कर्मा क्या पाए। गुरु का शब्द संभाल तुम उड़े गत मत शब्द पाए। नानक सत

बोलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत पेरी रहा सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तो सहस पद विमल ननेक पद गंध वेन सहस तब गंध विचलत मोहि सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसरे चानन सब मैं चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत से भावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनोवन दिनो मोहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारं को हो जाते तेरे नाई वासा रागड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिख लिखे गुर पाया मन हरलि मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर गंडोत पुन वड्डा हे रहा साकत हर साधन जाने आतन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुवे दुख पावे जम काल सह सडंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मन पव खंडा हे अविनाशी पुरख भया परमेश्वर वसोभ खंड ब्रह्मंडा हे।

तान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोक पर गासे देखत दर्श पटक ब्रह्म भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अतलुभित आल समूह जो कुसम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु राम दासे। तीन पवन पर पूर रहियो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई आप।

0: जनते उपाय कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता पी करनीता सो करता चिंता करे जिन्य उपाय जग तिस जोहारी स्वास्थ्य तिस तिस दीवाने पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लखन क्या चिंगेया लखन प्रवा लख तपिवर दीर्ता सहजो विवान लख सुतन संग्राम ब्रह्म छुटे प्राण लख सुटी लग्या त्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करतै करणा के लिखै अवन जा नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान कौन सत्य।

सुपाए, सतगुर भेटे सो सुपाए, हर का नाम मन वसाए, नान नदर करे सुपाए, आस अंध सिते ने केवल। हम मैं शब्द जलाए पर